0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: समी चौं चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे ने विवरण पी विषय मई खाता खाई हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
3: आई समी जो लोटरी पढ़ती हूँ छापता ही गुदी
2: भर दी आप भर दी लोटरी खाले पढ़ दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आ रही सुमी बैंक आप ही बनी आ रही
3: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हेदरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई रेडियो आदि खुला 105.4

0: हृदय क्लिनिक में डाक्टर आउने सूचना। यही असार 20 गते शनिवार का दिन छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील कार्की आउँदै हुनुहुन्छ।
1: यदि तपाईलाई अनुहारमा कालो पोतो आउने चाया अनावश्यक गुठी दाग दुबी सेतो दुबी

0: समीचो चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बहंगे ने विवरण पी भी जा मुई खाता खाई हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटी भर दिलवा
2: आंगी समीचो लोटी पर दी हूँ छापता ही गुरी
1: भर दी आ भर दी लोटी खाले पर दी बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
5: आहा कस्तो ब्रान्डिङ अनि टिकाउ होला जस्तो छ है जुत्ता त गजब लाग्यो
6: हो र मैले नि राम्रो लागेर गोल्ड स्टारको अथराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिङ नयाँ बजारबाट जुत्ता अनि चप्पल किनेर ल्याए
5: मलाई नि चाहिएको थियो आजै त्यही जान्छु
6: गोल्ड स्टार को आधिकारिक शोरूम अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिङ आठ नयाँ बजार चोकैमा गोल्ड स्टार कंपनी का पार्टी सुज स्कूल तथा अफिशियल सुज स्पोर्ट्स सुज लेडीज जेन्ट्स सुज तथा जुत्ता चप्पल को होलसेल एवं खुद्रा बिक्री गरिन्छ
5: गोल्ड स्टार को अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिङ आठ नयाँ बजार चोक
6: प्रोप्राइटर बोधराज रेग्मी र सरस्वती रेग्मी
5: मोबाइल 9849618921 र 9842349.

एस आदि खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।

0: ओए ना यो तो सात से एक से पाँच थोपलो चार मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले रसोई क्या हो।
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानी को भोक लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगा।